किंतु पथिक, इस पथ पर जो करता सफर, नहीं नहीं वो नहीं देख सकता इस दृश्य को निगाह भर।

लोया के भी मिलोनिया टांडो करके भी मिलोनिया Yo, won't give it to you.

这三把拉裤都没看他家给没发书把那个布鲁库那个人比那米拉拉干卡穆沙穆水来大哥的两处高拉过发书我们裤子的卡进去了裤子可以哈西卡可以没奥拉哦ये ताली सा ये तारा पासा कौती सीधा ये कौती टूटा ये

खतारी कलम लाए धान बकुरो पोदै बकुर तिखा तिखा तारी कलम लाए यो धानरे पुरो टपक कई मोर ला।